0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: लम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज।
2: मेसना डिजिटल प्रस्तुत गर्दछ।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: प्रोप्राइटर राजेश परियार, सम्पर्क नम्बर
1: 9849 29 13 27।
2: सेवा बुक स्टोर चौतारा 5 सिन्धुपाल्चोक चोक।
3: हाम्रा सेवाहरू:
2: स्टेशनरीका सम्पूर्ण सामानहरू,
3: फोटोकपी प्रिन्ट,
2: कलर प्रिन्ट,
3: पीवीसी आईडी कार्ड,
2: सबै प्रकारका खेलकुद सामग्रीहरू,
3: सबै तहको तथा विभिन्न पुस्तकहरू,
2: सबै प्रकारका कम्प्युटर सम्बन्धी कामहरू,
3: ट्रफी,
2: मायाको चिनो,
3: मेडल,
2: फ्रेम,
3: जर्सी सेटहरू तथा प्रिन्ट,
2: सब्लिमेसन प्रिन्ट,
3: जर्सी प्रिन्ट,
2: कस्टमाइज कप प्रिन्ट,
3: मेटल फोटो प्रिन्ट।
2: प्रोप्राइटर
3: प्रकाश श्रेष्ठ,
2: सेवा स्टेशनरी एन्ड सप्लायर्स।
3: कन्ट्याक्ट नम्बर 9841924274।
4: को होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छु गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक। डिलक्स रुम विथ एसी, हट एन्ड कोल्ड वाटर, एलईडी टिभी, सेमिनार हल, रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, फ्री वाइफाई, पार्किङ एरिया, फ्यामिली एन्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट। कस्टमर सेटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स। न्यू अरुणीको होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छु गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक। इमेल होटल अरुणीको @gmail.com। कॉन्टैक्ट 011-620-326-9860-982293। न्यू अरुणीको होटल एंड रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड चौतारा शांगा सुबड़ी नगर पालिका 5 सिंधुपाल्चोक।
5: यो हो हेलम्बु FM 89.6 MHz।

0: भइरहे
1: भोजी भोजी भोजी ऊ देखाओ त्यो अरे
2: प्यार से दे रहे हैं रख लो
1: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार बिका लिखवा ले बुका अरे अरे ए ए
2: आ जिगर पलाच